सतगुर होई दयाल तसरदा पूरी है, सतगुर होई दयाल नकब हूँ चूरी है, सतगुर होई दयाल ता दुख ना जानिए, सतगुर होई दयाल ता हर रंग माणिए। अकाल पुरख के दिते हुए सारे रंगों माणते हुए जुड़ चुके जी एक बार फिर एक खूबसूरत शाम, खूबसूरत स्रोतों के लिए खूबसूरत रेडियो प्रोग्राम रेडियो उड़ान लैके जिंदगी जिंदाबाद ते चढ़दी कला की पहचान रेडियो उड़ान प्रभ संत दे नाल।

0: साहा वर गे आखरी साह तक याद रहेगी तू।
1: क्या बात है जी,
2: मेहरबानी जी,
1: बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तुसीं अज साडे स्टूडियो नूं भाग लाए मास्टर सलीम जी, 24 जुलाई नूं मिसीसागा कन्वेंशन सेंटर दे विच लास्ट होका दे रहे हैं, बहुत लिमिटेड जिहा सीट आ। तुसीं इस आवाज़ नूं, इस चंगे संगीत नूं, साफ सुथरे म्यूजिक दे जे तुसीं आशिक हो, एक ऐसी आवाज़ दे तुसीं आशिक हो कि जिहड़ी दिलां दे विच घर करे, तुसीं 24 जुलाई नूं मिसीसागा कन्वेंशन सेंटर दे विच पहुँचना आ। लास्ट सदा एक बार रोहन नंबर ते एक बार लास्ट सदा दे दो।
3: ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ, ਸੋ 24 ਜੁਲਾਈ 2026 ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਸ਼ੋਅ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਉੱਥੇ ਪਲੀਜ਼ ਪਹੁੰਚਿਓ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ
2: ਮਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ।
1: ਸੋ 900 ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਹਨ ਆਪਣਾ ਦੇ ਦਿਓ,
2: 6477839873।

0: IQ, Fashion IQ, Latest Design, Trending Outfits,
1: लेडीज सूट, लहंगे, गरारे, शरारे,
0: कुर्ते, पजामे, शेरवानियां, कोट पैंट, ब्लेजर अते किड्स फैशन,
1: विंटेज ते सफारी लगेज सेट्स दी वड्डी कलेक्शन, थीम वेडिंग ले टॉप टेलर टीम भी अवेलेबल, फैशन IQ, फैशन IQ, हुने कॉल करो 9054532225 या गूगल ते सर्च करो फैशन IQ, स्पेशल गिफ्ट ले रेडियो उड़ान दा रेफरेंस देना ना भूलियो।

0: सर्दी च हीट नहीं चलदी ते गर्मी च एसी।
1: ले आपा हुणे करदे आ संधू साहब नाल गल ते करदे आ मसले दा हल।
0: एसी फर्नेस गैस लाइन वाटर हीटर या ह्यूमिडिफायर सर्विस या इंस्टॉलेशन नव एयर कंफर्ट ते जतिंदर संधू नु कॉल लाओ ते लाइफ च कंफर्ट पाओ। कॉल 647-706-6640
1: 647-706-6640।
2: शादी दी मूवी बनवाउन लई या रिंग सेरेमनी लई वेडिंग एनिवर्सरी जागो प्री वेडिंग बर्थडे और एनी इवेंट दी वधिया वीडियोग्राफी ते फोटोग्राफ शूट करन लई याद रखो देसी सिनेमैटिक फिल्म अपने हाई एंड इक्विपमेंट्स ते क्रिएटिव आइडियाज दे नाल बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड कर देने। बुकिंग लई आज ही कॉल करो जगदीश सिंह नो 416-930-1251 416-930-1251।
3: ओए ट्रक काला लिया जदों वेखो एदियां कमानियां इटलियां रहंदियां की करा।
4: मैं सुनया जी अपने पंजाबी भरावां जे अते गैरी ने खोल दित्ती है GTA विच ट्रकां दे स्प्रिंगां दी पहली शॉप PNJ स्प्रिंग व्हील अलाइनमेंट।
5: पहुंचो 5330 ब्रेडको बुलेवार्ड मिसीसागा मेन इंटरसेक्शन डिक्सी एंड मैथसन।
6: इत्थे पी लाइन लेजर मशीनां नाल अलाइनमेंट ते नवे स्टाइल दियां मशीनां नाल बैलेंसिंग कीती जांदी है। इन्ना ही नहीं 4 व्हीलर्स अते 18 व्हीलर्स दे टायर्स दा खास प्रबंध वी है। जे तुसी ट्रकां ते ट्रेलरां दी कमानियां दा तसल्ली बख्श काम करवाना चाहुंदे हो
4: कॉल करो जे एंड गैरी नू
6: 905-459-5533
4: 905-459-5533 ते
6: PNJ स्प्रिंग व्हील अलाइनमेंट।
7: टीम फोर एंटरटेनमेंट पेश कर दे ने पंजाबी विरसा 2026
8: ओए सावण चढ़िया ती
7: टोरंटो शो सैटरडे 25 जुलाई नू
8: दुनिया मेले जांदी
7: थिएटर एट ग्रेट कैनेडियन टोरंटो।

0: रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदन वेचन या इन्वेस्टमेंट ले याद रखो भरोसे ते विश्वास वाला कम्युनिटी दा जानिया पछाणिया नाम मल्टी अवार्ड विनर ब्रोकर शम्मी पठल
1: वधिया रैकेट प्राइस ते कार सेल करवाउन ले कॉल करो 416-917-7763 यानी 416-917-7763।

टीम फोर एंटरटेनमेंट पेश कर देने पंजाबी विरसा 2026 टोरंटो शो सैटरडे 25 जुलाई नो थिएटर एट ग्रेट कैनेडियन टोरंटो।

0: ਲੋ ਜੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਜਾਣ ਦਾ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ.
1: Imagine having a Muskoka getaway that works for you, even when you're not there. Discover a rare opportunity at an exclusive open house in Huntsville, where peaceful surroundings, year-round enjoyment, and endless outdoor adventures meet proven investment potential. This exceptional property offers 3 bedrooms, modern finishes, and lake access nearby. Curious to learn more? Visit the open house Saturday, July 25th from 1 till 3, or contact Jay Gundam, Remax Gold Realty, Inc. at 416-265-2222.
2: कमाल का कैच था यार, यकीन ही नहीं आ रहा.
3: तुम्हें इस पर यकीन नहीं आ रहा तो ये सुनो, सेव ऑन एनर्जी वाले मुफ्त इलेक्ट्रिक हीट पंप दे रहे हैं अगर तुम्हारे घर में इलेक्ट्रिक या ऑयल हीटिंग है.
2: इस बात पर मुझे पूरा यकीन है, वो तो इंस्टॉलेशन का 100% खर्चा भी खुद उठाते हैं. अगर तुम्हारे घर में ऑयल हीटिंग है तो वो ऑयल टैंक भी बिल्कुल मुफ्त बाहर निकाल कर देंगे, और हीट पंप से तुम्हारे हीटिंग बिल्स 50% तक कम हो सकते हैं.
3: तुम्हें ये सब कैसे पता?
2: क्योंकि मैंने भी पिछले साल ये लगवाया है.
3: अच्छा, वो क्या वेबसाइट थी?
2: saveonenergy.ca/eap.
4: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.

0: Brampton या फिर तीजी लोकेशन 9985 Macwin Drive Unit 9 Brampton Indian Fruitland ते हुण चौथी नवी लोकेशन 1465 Mayfield Road Brampton वधिया ग्रोसरी सब तो नेड़े Indian Fruitland 905-456-9900
1: एच के मूवर्स का हो साथ लोकल एंड लॉन्ग डिस्टेंस के लिए टेंशन लेने की नहीं है बात एच के मूवर्स होम ऑफिस अपार्टमेंट्स एंड डिलीवरी बिग और स्मॉल वी मूव इट ऑल वी ऑल्सो शिप कार्स वी ऑल्सो डू स्टोरेज 30 years एक्सपीरियंस वी सर्व विद अ स्माइल एच के मूवर्स गिव अस अ कॉल मिस्टर हरमिंदर 416-524-6704 416-524-6704
2: हासल फ्री मूविंग के लिए एच के मूवर्स
3: कि तुसी भी अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स नो सुपर वीजा या विजिटर वीजा ते कनाडा लाके आ रहे हो ते फिर प्लैनेट इंश्योरेंस तो सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर इंश्योरेंस प्लान लाके उन्हें प्रॉपरली प्रोटेक्शन दे साड़े अप्रूवल फास्ट ने कवरेज तुहाडी नीड के मुताबिक है ते कॉम्प्रीहेंसिव प्लान है जिहड़ा ए सारा कुछ तुहानू मिल सकता है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस ते तुसी मैनू कॉल करो एदे लई नंबर है 416-524-3535 416-524-3535 विदेश आपरा फ्रॉम प्लैनेट इंश्योरेंस
4: डॉक्टर कुमार लगे हुए नशियां तो मुक्ति दवाने वास्ते शराब अफीम पोस्त डोडियां दे नशियां तो दूर कर देंदे हैं डॉक्टर कुमार लेडीज़ दे मर्दां दे गुप्त रोगां दा इलाज डॉक्टर कुमार बुजुर्गां दे मोढे गोडे दुखदे हैं भाई डॉक्टर कुमार हर्बल वैगरा भी तुहानू वेखदे हैं डॉक्टर कुमार हर तरह के इलाज वास्ते डॉक्टर कुमार 416-425-0138 ग्रेटर पंजाब प्लाजा माल्टन गुरु घर दे कोल डॉक्टर कुमार 416-425-0138 ते कॉल कर सकते हो
0: इस बार रक्षाबंधन के पावन अवसर को बनाएं और भी ज्यादा स्टाइलिश खरीदिए जीटीए में कहीं और ना मिलने वाली बेहद खूबसूरत राखियां इंडिया सजावट एंड पूजा हट से और आपके घर की सजावट के लिए भी बहुत कुछ मिलेगा ओनली एट इंडिया सजावट एंड पूजा हट 31 मेलनी ड्राइव यूनिट 5 ब्रैम्पटन 9054586808 इंडियन फ्रूटलैंड 905-456-9900
4: रेव सिंह कैनेडियन जंपल साडा अपना रियल्टर कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी वास्ते पूरी हिस्ट्री काट के प्रॉपर्टी दी पूरी खोज करने तो बाद फिर तुहाडी प्रॉपर्टी लिस्ट कर देने रेव सिंह होम लाइफ सिल्वर सिटी दे एक्सपर्ट राइटर रेव सिंह दी तिखी नजर तुहाडी प्रॉपर्टी वेचने दे खरीदने विच तुहाडी हेल्प कर सकती है नवे प्रोजेक्ट दे माहिर अते इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी दे एक्सपर्ट रेव सिंह नूं फोन करो 647-740-9600 647-740-9600 ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰੈਲਟਰ ਰੈਵ ਸਿੰਘ

0: मॉर्गेज ब्रोकर, मॉर्गेज अलायंस, मॉर्गेज क्वीन, नीलम सराव।
1: नंबर है
0: 647-739-87-10।
1: बहुत इजी नंबर है तुहाडा। एक बार नीलम जी नंबर दोबारा भी दे दो और लाइन ऑफ क्रेडिट बारे भी थोड़ा जा जानकारी दे दो।
0: लाइन ऑफ क्रेडिट जे तुहाडे कोल घर दे विच एक्विटी हैगी है, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम, कम सी मी, आई विल डेफिनेटली विल बी एबल टू हेल्प यू।
1: वेरी गुड।
0: एज लॉन्ग एज एज आई सेड कि इफ यू हैव एन एक्विटी भावे तुहाडे कोल 50,000 चाहिए, लाख चाहिए, 2,00,000 चाहिए, 80% अप टू लोन टू वैल्यू।
1: वेरी गुड। नंबर दे दो
0: 647-739-8710, 647-739-8710।
1: थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच।

0: 75 plus locations de naal pizza depot leke aaya full on taste da combo 50 plus toppings de naal banao apna favorite pizza try karo sweet chili mango pizza ya shahi paneer pizza
1: juicy ka spicy wings 25 flavors de vich ate indian style chicken wings bhi try karo
0: loaded fries naal butter chicken fries shahi paneer fries matlab har bite vich full paisa vasool apne nazdeeki store te jao ya pizza depot.ca te order karo
1: te je tusi business karna hai te franchisee at pizza depot.ca te aaj hi apply karo pizza depot swaad ki chop toppings non stop
2: यारों के साथ जशन या फैमिली के साथ करना हो जशन ढाबा ऑन द फॉल्स आए टेस्ट का वादा और चॉइस भी ज्यादा
3: दिल्ली वाला बटर चिकन रोगन जोश सोया चाम बेस्ट वेज नॉन वेज बिरयानी इन द टाउन बेस्ट वेज नॉन वेज एपेटाइजर या माउथ वाटरिंग मेन कोर्स खाना हो तो सीधा चले आए ढाबा ऑन फॉल्स द बेस्ट फूड इन नायग्रा फॉल्स LLBO एंड बियर ऑन टैप ऑल्सो अवेलेबल वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम द फॉल्स फ्री पार्किंग विजिट 5039 सेंटर स्ट्रीट नायग्रा फॉल्स कॉल 905-358-0864
2: 905-358-0864 Dhaba on the Falls
4: भाई साहब जिंदगी दा कोई भरोसा नहीं इस करके हाथ दे विच इंश्योरेंस पॉलिसी होनी बहुत जरूरी है
5: ता इसलिए आज ही हरप्रीत सैनी नु मिलो इना कोल ने स्पेशल लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स विद इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस तुहानू सिर्फ 10 साल या 20 साल लई पे करन दी लोड है ते इन्ने नाल ही तुसी पूरी लाइफ कवर्ड हो डिविडेंड्स दे नाल हर साल कैश वैल्यू ग्रो करदी है ते कवरेज इंक्रीज करदी है वधेरी जानकारी लई कॉल हरप्रीत सैनी 416-817-6500
6: नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे आप

0: जी हाँ, चांदी के फैंसी सेट, चांदी की बैंगल्स और चांदी की पायल।
1: इतनी बस नहीं, जेंट्स ने चांदी के कड़े, चांदी की चेन, चांदी के ब्रेसलेट,
0: बर्तन और चांदी के किसी भी तरह का सामान लेने के लिए वन एंड ओनली सिल्वर हट।
1: फोर एंड अवनीजर द इंटरसेक्शन ते मुर्दबारे बाय प्लाजा दे विच सिल्वर हट।
0: 6473393521
1: 6473395 4525 अवनीजर रोड ब्रैम्पटन सिल्वर हट।
2: मैं जिथे चलेंगा चलूंगी नाल तेरे वे टिकटा दो ले ले।
3: लेनियां होन या चार, बिजनेस लई जाना होवे या फिर घूमन लई, इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट, हर तरह दे ट्रैवलिंग पर्पस लई कांटेक्ट करो। एयर टिकट्स, इंश्योरेंस, पासपोर्ट एंड वीजा सर्विस ओवी रीजनेबल प्राइसेस ते, स्पेशल ट्रैवल पैकेजेस भी अवेलेबल ने। कटारिया टूर एंड ट्रैवल, 2883 डेरी रोड ईस्ट, मिसीसागा। कॉल 9056781200।
4: मतलब शायद तुसी स्वीट महल नहीं गए।
5: नहीं मैं मर जा, उठे क्यों होने।
4: GTA दा सब तो स्वादला खाना उठी ता मिलता है। सही सुनिया भाई, जिन्ना सोना रेस्टोरेंट है उस तो भी ज्यादा स्वाद स्वीट महल दी हर एक डिश है। जलेबियां, पकौड़े, समोसे, टिक्कियां, व्याह होवे पार्टी या होण किट्टियां, स्वीट महल दी वेज या नॉन वेज आइटम्स ले डाइन इन करो या केटरिंग करवाओ। इको नंबर कुमाओ 416-679-9999 और विजिट यूनिट 9680 रेक्सडेल बुलेवार्ड जॉबिको। स्वीट महल, ट्रेडिशन ऑफ टेस्ट।
6: रात आमे छड़ दिनी आ, पर जनाब चले किथे हो?
7: मैं चलिया स्काईडम ऑटो ते बॉडी सेंटर, जो सर्टिफाइड कोलिजन शॉप है, जो करनगे मेरी कार दी केयर, बेस्ट सर्विस ते फुल रिपेयर। एक्सीडेंट होण ते इंश्योरेंस कंपनी नाल डील भी करदे ने। स्काईडम ग्रुप ऑफ कंपनीज पिछले 25 सालां तो तुहाडी सेवा विच।
6: भाई ते कारां दे नाल नाल बसां ते वड्डे ट्रकां दी रिपेयर ते बॉडी वर्क दा भी काम कीता जांदा है। फ्लीट वास्ते स्पेशल पैकेज ने।
7: कॉल करो 905-874-9878।
8: बंबा गया मैं जिथे जावा, मुंडे कहंदे बंबा गया।
9: सत श्री अकाल दोस्तों, सारंग प्रोग्राम में तुहाडा सब दा स्वागत है। उम्मीद करते हैं तुसी सब ठीक ठाक होवोगे, आपो अपने कम्मां कारां विच व्यस्त होवोगे। मैं तुहाडा दोस्त अते होस्ट जगजीत महल तुहाडा ते मेरा साथ बनाया रहेगा सही 3 बजे तक। अज दे प्रोग्राम विच ते गल्लां बातां होणगियां, गीत संगीत होएगा, स्पोंसर बारे जानकारी दित्ती जाएगी, ते उत्थे अज दी डेट दे विच की वापरिया। जिदा तुसी देखिया कि भारत ते जिम्बाबे दा क्रिकेट दा मैच सीगा अज, जिसे विच भारत ने बड़ी वड्डी जित प्राप्त कीती आ। बेशक पिछले 4-5 मैचां तो भारतीय टीम T20 विच बुरी तरह हारदी आ रही आ। इंग्लैंड दी दे नाल सीरीज भी हारी, उस तो पहला एक होर सीरीज हारी सी, इंग्लैंड नाल 20-20 की सीरीज हारी, तो वनडे की सीरीज भी हारी सी। सो अज भारतीय टीम के काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है। सूर्यवंशी ने अपने इंटरनेशनल क्रिकेट जगत की पहली हाफ सेंचुरी जी कंप्लीट की हैगी, तो बधाई दे पात्र आ। बड़ी छोटी उम्र के उस नौजवान ने बड़िया बड़िया मल्ला मारिया, तो आने वाले समय में भारतीय टीम के लिए बड़ी वड्डी एक उम्मीद बन के सामने आया गा। ते होर भी गल्लां बातां होणगियां, आओ आपां इस प्रोग्राम की शुरुआत करदे आं एक मिठे जे गीत दे नाल। तुहाडे सारिआं दे लगदा कि पसंद आवेगा तुहानां नूं। एक मैं हुणी गाणा सुण रहा सीगा, आओ सुणदे आं प्रोग्राम का पहला गीत, ते उस तो बाद होर गल्लां बातां करदे आं।

0: ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ ਦੇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ
1: ਫੋਰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 416-725-2551 416-725-2551
2: Canada Day Study Visa, Express Entry, Canadian Express Entry, Spousal File, Parents PR, Super Visa, Nanny, Work Permit, Farmer, Investor, या Self-Employed दी File, गल की, Immigration दी हर Problem दा Solution लैन लई, Community दे जाने पहचाने, अते तजरबेकार Immigration Consultant, Gary Virk नू मिलो.
3: कोई केस रिफ्यूज हो गया या अपील ते चला गया, होवे Immigration दा कोई भी मसला, हमेशा याद रखो इको ही ना, अते इको ही था. CIC Immigration, हुणे ही कॉल करो, 416-456 4164566161
4: कनेडा विच रहंदे हुए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार दी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई
5: इसे लई मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस ते सम्राज सिद्धू तो ही करवाई है
6: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस मॉर्गेज इंश्योरेंस डिसेबिलिटी इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो ता सब तो वद कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिम्राज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-456-3381 ते 416-457-3381 ते
4: नाले जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही लई हुई है तो तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाउणगे हुने ही सिम्राज सिंह सिद्धू नु कॉल करो 416-457-3381 416-457-3381
7: ਦੋਸਤੋ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਜਾਂ ਚਲੋ AM 530 ਤੇ 24/7 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ www.deshpradeshradio.com ਜਾਂ www.deshpradeshtv.com ਲਾਈਵ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲਾਈਵ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲਓ ਜੇ ਵਾਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ IPTV ਬਾਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ TV ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ 24/7

0: ஃபர்ஸ்ட் யா செகண்ட் மோர்கேஜ் யா ரீஃபைனான்ஸ் கிரமனா சொன்னேன் தத்து சிவி அப்படி கட்டி மூட 1200 டெரி ரோட் ஈஸ்ட் யூனிட் 22 மிசிசாகா 416-804-2015 416-804-2015
1: हाय चूहा थे कॉकरोच भी सुन लो मेरी गल मैं इस किचन खाना बनाना ही नहीं
2: है फिर कॉकरोच तो जो है वो हाले महीना पहला ने ट्रीटमेंट कराई सी
1: मैं तेरा पहला ही क्या सी सस्ते दे चक्कर च ना पो हुन ऊपर बेसमेंट वाले बेड बग दी कंप्लेंट भी करी जांदे आ
2: ओ मैं ता कहना घर ही बेच दिनी है
0: आप घर चो बाहर क्यों जाना चूहे कॉकरोचा नु कड्डो टोरंटो पेस्ट अरेस्ट नु कॉल करो जेडे छोटे तो छोटे घर तो लेके वड्डिया बिल्डिंग्स रेस्टोरेंट होटल्स मोटल्स नर्सिंग होम्स विच वी काम करते हैं सस्ते दा दावा तो नहीं पर कम दी गारंटी है 647-515-8000 टोरंटो पेस्ट अरेस्ट सिक्के बंद कम दी गारंटी 647-515-8000
3: हेलो AM 530 तो तुसी सुन रहे हो देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो
4: टुडे विच लाइव गलबात करन लई हुणे कॉल करो 905-564-6444 सुनते रहो देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो चलो AM 530 तो
3: चलो AM 530 तो तुसी सुन रहे हो देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो
4: टुडे विच लाइव गलबात करन लई हुणे कॉल करो 905-564-6444
3: 905-564-6444
4: सुनते रहो देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो चलो AM 530 तो

0: कनेडा विच रहंदे हुए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई।
1: इसे लई मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस दे सिमराज सिद्धू तो ही करवाई है।
2: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो तो सब तो वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने। पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-456-3381 ते 416-457-3381 ते।
0: नाले जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही लई हुई है तो तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो। बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाउणगे। हुणे ही सिमराज सिंह सिद्धू नूं कॉल करो 416-456-3381 416-457-3381।
3: कैनेडा दे स्टडी वीजा, एक्सप्रेस एंट्री, कैनेडियन एक्सप्रेस एंट्री, स्पाउसल फाइल, पेरेंट्स पीआर, सुपर वीजा, नैनी, वर्क परमिट, फार्मर, इन्वेस्टर या सेल्फ एम्प्लॉयड दी फाइल, गल की इमिग्रेशन दी हर प्रॉब्लम दा सलूशन लैण लई कम्युनिटी दे जाने पहचाने अते तजर्बेकार इमिग्रेशन कंसल्ट